गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ। सुख टल गुर सेवियहिंस सहज सुभाए, दर्शन परसें गुरु कै जनम।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवीं छपै शांतो प्रसाद चक्कर जेह नर वरन जातर पात दहन जे
1: रूप रंगर रेख पे को कह न सकत के
0: चल मूर्त अनुभव प्रकाश मितोज कहि जय
1: कोट इंद्र इंद्राण शाहु शनाहन गणिज
0: जय इंद्र इंद्राण शाहु शाहन गणिज जय त्रिपवन महीप स्वर नर स्वर नित नित मंत्रण कहत
1: तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बनत समत भुजंग प्रयात छंद
0: मस्तु अंकाले नमस्तु कृपाले नमस्तु रूपे नमस्तु अनुपे
1: नमस्तंग पे
0: नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व

0: दान है, तर्वर्ग है, असर्ग है,
1: नीला नाद है, जी है, जाद है,
0: अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है,
1: भांजा भांजा, चूजा चांजा,
0: अमीक है, रफीक है, अदंध है, अबंध है।

0: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणिं सर्वं त्राणिं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं योगता सर्वं मुक्ता
1: प्रसावल शन्त्व प्रसाद
0: नरक नाशि सदा प्रकाशे नंगं स्वरूपे पंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: नामितर पंगितर कामनर पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न बाते
0: श्री गमितो मिकसदावं प्रभाज अजाहें
1: भगवती शंत व प्रसाद
0: जहर जूर के हाजर हजूर है मिश्र सलाम है समस्त कलाम है
1: कि साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज्य करीम है
0: विरोधी दहंद के राज करेंद है करीमल कुमाल है कुशनल जमाल है
1: गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरी फल शिकन है हरासल फिकन है
0: वृणाशन समस्त निवास गंजन गनीमर जाय करीम है
1: समस्त जुबा है के साहिब किरा है के नरकन पर नास है वैस्तल निवास है
0: सर्वल गवान में सर्वान तमाम तुम्हें जय समस्त अजीज
1: है समस्त अदीस है अदेशल अलेख है अमेशल अबेख है
0: नौ जमा में कोली मैं करी मल कुमार है जरूरत जमाल है
1: अचलंग प्रकाश है के मितो सबास है के अजब स्वरूप है के मितो बेपूत है
0: मितो बस के आत्म प्रभ के चलंग नांग के मितो अभंग है
1: मद पार शंत व प्रसाद
0: मन मन प्रणाम गुणगन हर बर गंज हर नर पर पंज
1: अनगन पर नाम मुन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड
0: भगवान आज मन मन प्रकाश गुणगन पर नाम जल थन मदाम
1: आंशी जंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित धार
0: जल थल मन दस वस पण जल थल मन दस वस बेअंत
1: अनुभव नास तिरतर त्रास आजान बाहो एक सदा हो
0: कारात कथनी नाल खल खंड ख्याल गुर बर अकाल
1: कर कर पर नाम चित चरण नाम अंशी जगात आजी जिना बात
0: जगात अनंज बात अंटट भंडार अंठ पार
1: आठीत धर्म अतीत कर्म अनबंध अनंत

0: सर्व वारण है।
1: पित्राणा जाके करण हमन मान जग जान है।
0: सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्व पासे है, सर्वनाशे है।
1: पराक्रम संग पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है।
0: ब्रह्मंड से है, खल खंड से है, परते पर है, करना कर है।
1: थपा थपा थप कृता कृता अमृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है, करना कृत है, कृता कृत है, तरनी त्रित है।
1: सुर है परमेश्वर है, कृता कृता अमृता अमृत है।
0: अजब्बा कृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है, खल खायक है।
1: संपर करुणा ले नृपनायक है, सर्पायक है।
0: पापंजन है, अर्गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है।
1: कृता सर्वा कृता है, कर्ता कर है, अर्ता हर है।
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पचंग पर्याद छंद।
1: नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
0: नमो अंधकार, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
1: नमो रास संताम सिंह शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
1: नमो ज्योति ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग
1: अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आशासे, नमो भांग भांगे,
0: अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अच्छरी छंद। अकाल दयाल अलेख
1: पेख,
0: अनाथे परमाते, अजोनी अमोनी,
1: नारागे नरंगन रूपे नरेखे,
0: अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे, पुचंग पर्याद छंद।
1: समस्तल प्रणामे, समस्तल प्रणास्य, अंजल नामे, समस्तल निवासी,
0: निर्कामंग पैपूते, समस्तल स्वरूपे, को कर्मंग परनासी, सदर्मंग पैपूते,
1: सदा सचिदानंद स्तंग परनाशी, करिमूल कुनंदा, समस्तल निवासी,
0: अजाय पैपूते, गजाय बगनी में, हरियम करियम करीमल रहीम।
1: चतर चक्र वर्ती, चतर चक्र भोगते, सुयम्भव सुभंग सर्वदा।

0: देव अफनिंदन सचर भूत भविख भवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।
0: पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बो पुंज खपेंगे।
1: साध समूह प्रसन्न फिरे जग सतर सवे अवलोक छपेंगे।
0: मानव इंद्र जिंद्र नरात जो अंतर लोक को राज करेंगे।
1: कोटि नानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे।
0: ब्रह्म हे सर्व संसची पतंत फसे जम फास परेंगे।
1: जे नार श्री पत के परसे भगते नार फेर न दे तरेंगे।
0: कहां पे हो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो।
1: नाथ फिरियो लिए सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो।
0: बास कियो बखे आंसो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
1: साच कहो सुन लियो।

0: महानय अनुमानत महामूढ़ कष्पेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा से निरंकार का चीनत न बेब
0: आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तोहे तेती
1: तुमरा लखान जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा
0: एक कह रूप अनूप स्वरूप रंक पै और राव कही भूपा
1: जेरज से तज कीनी उत्पज खान बोर रच दीनी
0: कहो फूल राजा वह बैठा कहो सिमट प्यो संकरी कठ अवरक्षा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो
1: उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता
0: ये शरणी परे दिन के दुष्ट दुख तो हो मरे
1: पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं
1: रक्षा होए ताई सब काला दुष्ट
0: कृपा दुष्टन जाए न हर हो ताक ताप तनक मोहर हो
1: प्रेत सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके।

निरगुण अवगुण ना विचार हो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। सुख हटल गुर सेवी है अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन भिनसै दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ शिनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन होए सो भला, प्रभु कै सिमरन सो फल फलाव। से सिमरै जिन आप समराए, नानक ताकै लागू पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बूझै, प्रभु का सिमरन सबकी सूझै, प्रभु का सिमरन नाई जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाए, प्रभु जी बसै सादगी रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमौता जी, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्लाह, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरे से पारे उपकारी, प्रभु को सिमरे तन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन अणद कनेरे, प्रभु सिमरे बसे अरनेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबूना झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विघासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार, सिमरे से जन जन कौ प्रभु मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जसा बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना,

प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुआ नाम तेरे संग सहाई जय मां प्यान दूध जम दल है तै केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो व्यत पारी हर को नाम किन माए उधारी इन पुना चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सिष्ट को राजा दुखी हर का नाम जपत होए सुखी आला करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर अनक माय रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत अगावै जे मार्ग जात केला तैर नाम संग हो सोला सा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूट नाई कोट लख बाई नाम जपतै पार पराई

मलकबू न धोवे हर का नाम कूट पाप खोवे ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाई है साधकै संग जे मार के गन जाए न को सर का नाम हुआ संग तोसा जै भैंडे मैं अंध गुबारा हर का नाम संग उजारा जपन तेरा कोना सिंजानू हर का नाम ते नाल पछानू जा महाप्याण तप्त बहु काम त्यार के नाम की तुम उपर श्याम जा त्रिखा मन तुझे आकरख ते नानक हर हर अमृत बरख भक्त जन की बर्तन नाम संत जन के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औख साधक मात अर्जन कै नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मंत रंग रतै रंग एक नानक जन कै ब्रत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कशनाए ब्योग जन रातार नाम की सेवा नानक पूजार हर देवार अर्जन कै मालक जीना हर धन जन को वा प्रभ दीनार अर्जन कै ओठ स्थानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर ज पैर कै भगत प्रकट नहीं छ पैर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संकेते तरे पार जात एवर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तमर की कथा नाम सुनत दर दुगलता नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर सब नसै संत का संगमड पागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक शबर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पिखे सरब टंडोल पूजश नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग व्यास कर्म धर्म क्रिया सल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु भाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार

भक्तकारांग सगुत अगे दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलख हुए तिस गोती की मत तुम हुए भगवंत की टहल कर नित नीत मंत्र विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सुपन जीवन प्रबोधय राम नाम आत्म में सोदय राम नाम सारस पीवे सुपनत कह देव जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सुपनत फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख में जाने स्थूल चोहरणा को देव देस नानक कुसपनत कुसदा देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चोहर में जपे को नाम जो जो जपे तिसी गत होई सत्संग पावे जन कोय कर कृपा अंतरूर तारे पास प्रेत मुग पात्र को तारे सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितन पाई धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया धुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आ तुम राम जिसन अद्री आया दाद संतन भाई जन पाया सदा निक निक राजा सोदास दुर्गी प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सास जी पर सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा तुम्हें ताव जीवन मुख सब कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदानंद नहीं बियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जोवरताए साई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुगत पार ब्रह्म के सगले ठाहो जे जिद का रखे तैसा तिन्ना आपे करण ग्रामण जोग प्रभावे सोई फुन होग पसर आफन त्रंग लखिन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उसद करे नीक जने अंतन पारावार नानक रचना प्रभ रचि बहुविधि अनक प्रकार स्पदि कई कुट पुजारी कई कुट आचार बिहारी कई कुट पै तीर्थवासी कई कुट बन भरमय उदासी कई कुट वेद के स्रोत कई कुट तपिस्तर होते कई कुट आत्म जानता रहे कई कुट कब का विचार कई कुट नवजन नाम त्याव नाने करते अंत न पावे कई कुट भय मानी कई कुट अंध ज्ञानी कई कुट कृपण कठोर कई कुट अभिघातम निकोर कई कुट पर द्रव कुहिर कई कुट पर दुखना कर कई कुट माय सरमाए कई कुट प्रदेश प्रमाए जित जित लाव तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कुट से जति जोगी कई कुट राज रस भोगी कई कुट पंखी सरोपाए कई कुट पात्र बिरखण बजाए कई कुट पौन पानी बैसंतर कई कुट देश मंडल कई कुट सर सुरन खेतर कई कुट देव देव दान इंद्र सिर छात्र सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव तिस ते निस्तार कई कुट राजस्थान सातक कई कुट वेद प्राण सिमरत अरसासत कई कुट कीरतन समुंध कई कुट नान प्रकार जंत कई कुट केचर जीव कई कुट गिरी मेर सुरन थीव कई कुट जक निरपिसात कई कुट भूत प्रय सुकर मेर गाच सब ते नीर सबूत दूर नानक आप अलिप त्रय भरपूर कई कुट पाताल के वासी कई कुट नर सुर निवासी कई कुट जन्म जीव मर कई कुट भोजो नी फिर कई कुट बैठते खाए कई कुट घल थक पाए कई कुट किए तनवंत कई कुट माया मैं चिंत जह जह भाणा तह तह रख नानक सब की प्रभ के हाथ कई कुट भय बैरागी राम नाम संगतन लागी कई कुट प्रभ को जंत आत्म पार ब्रह्म लहंत कई कुट दर्शन प्रभ व्यास तिन को मिले प्रभ विनाश कई कुट मांग सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कुट खानी रखंड कई कुट आकाश ब्रह्मांड कई कुड़ अवतार ब्रह्मांड कई कुड़ अवतार कई जूत किन विसार कई बार बसरे पासार सदा सदा एक ओंकार कई कुड़ किन्ने बोपात प्रभु ते ब्रह्म समात
ताकांत न जाने कोय आपे आप नान क्रसो कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होते आत्म प्रकाश कई कोट दाद के बेत सदा निहारे को नेत्र कई कोट नाम रस पीवे मर पै सत सदी जीवे कई को नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सा सा समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलो करण कारण प्रवी कह दूसरना ही को नानक दिस बलहारण जल थल मयल सोयस्पति करण करावन करण जोग ज्योतिष भाव सोई हो गए खिन मैं था पनार अंत नहीं किस बार वार हुक्मे तार द्रहाव हुक्मे अबज हुक्म समाव हुक्मे चनेज व्यवहार हुक्मे करम कर प्रकार कर देख अपनी वड्याई नानक सब मेरे समाई प्रभावे मन कुत पावे प्रभावे त पात्र त्रावे प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे त हर गुण भाखे प्रभावे त पद दुसारे आप करे अपन विसारे दुहा सरा का स्वामी खेल से अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अरुण आवे कहो मनुख दे क्या हुए आवे ज्योतिष भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले ज्योतिष भावे सोई करे अनजान विख्या मेरा चे जे जानते अपने बचे पर मैं भूला दया दिस्तावे निमक मैं चार गुण फिर आवे कर कृपा से अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृश कशु ने आवे तिस तत्काल दे दिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीश ताका लेखा ना गणे जगदीश जियो पिंड साहब तिसकी रास खट खट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनते आप बनाई नानक जी वे देख बढ़ाई इसका बल नाई सहाथ करण क्राम सर्व गुणाथ आज्ञाकारी वपरा जियो ज्योतिष भावे सोई फण थियो कभू उच नीच मैं बस कभू सो घर करूंगा स कभू निंद जिन व्यहार कहू ऊब गास प्याल कहू बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावन हार कहू निरत करै बो भात कहू सोय रह दिन रात कहू महाक्रोध विकराल कहू सर्व कियो त्रवार कहू होए बह बड़ राजा कहू पे खारी नीस का साजा कहू अब कीर्त मयावै कहू भला भला कहावै जो प्रव राखे तिवीर गुर प्रसाद नानक सज कहे कबू होए पंडित करेब खेन कबू ओन तारी डावे त्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साध मोह ज्ञान कबू कीड़ हस पंग हो जियान कजुण परमे परमेय नाना रूप जो सोंग दिखावे जो पर भावे ते नचावे जो तिस भावे सोई होए नानक तू जाया वरना कोए कभू सा संगत पावे उसका स्थान ते बोलन आवे अंतर होई ज्ञान प्रगास उस नानक नहीं विनाश मन तन नाम हृदय करंग सदा से पारम के संग जो जल में जले आए खटान त्यो ज्योति संग जो समान मिट गए गवन पाए विश्राम।

ज्ञान के गर्भ गणेश पद जिसके अंतर राज अपमान सो नरक पाती हो सो आन जो जाने में जो बनवंत सो तविष्टा का जान आप सो गर्म अंत कहा वह जन्म मरे भोजन परमा वह धन भू का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीब उसावे नानकिया मुक्त आगे सुख पावे धनवंतावे कर गर्भावे तन समान को संगण जावे बहु लश्कर मान को बल करयास बल भीतरता को विनाश सब ते आप जने बलवंत फिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे अवंकारी धर्म राज करे खुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटे अवमान सो जन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे अवतार श्रम पावे सगले बिरतारे अंक तपस्या करे अंकार नरक सुरख फिर फिरे अवतार अंक चतन करे यात्र में दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो पला कहा वे तिसे भलाई निकने आवे सर्व ग्रहण जा कमन हुए कह नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझे का सोए तब उसको सुनाई कोए जावे जाने मैं कुछ करता तब लगर जुन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना आए चेत जब लग मोह मंग संगमाए तब लग तन मुरादे सदाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे ना कुंडतावे त्रिपत न आवे माया पाछे पावे अनुभोग क्या के करे न त्रिपत आवे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोर तीर्थ सब का जय नाम रंग सर्व सुख है बड़ भगी से प्रताप तो है करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाओ करण करावण करण हार इसके याद का विचार जैसे दृश करदा सोए आपे आप आप प्रभु सोए जो कुछ गिनो सो अपने रंग सब ते दूर सबों के संग बुझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरण बिन से आवण जाए नानक सदी रे समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचा सबके साथ आप गिनो अपन विस्तार सब का सुझाव करण हार उसते पिन कहो कि सोए तान तन तर का सोए अपने चलता करने हार कोते कर रंगे अपार मन में आवना अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वखया ने सच सच सत सब कीना कोठ मदे किन बिरले चीना भला भला भला तेरे रूप असुंदर अपारणो निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घड़ घड़ सुनी सरमुखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरण हार संत की निंदा नानिका बहर बहर अवतार अष्टवाई संत के दुख ने अर जकट है संत के दुखन जम तने छूटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखन मत हो मिलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के तक रख न कोय संत के दुखन तान प्रसोय संत कृपाल कृपा दे कर नानक संत संगत पीतर संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन कागज लवै संतन के दुखन सब जन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन के दुखन तिशन में जलै संत के दुखन सब को छलै संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन जन जाए संतोखी का थाव को ना है नानक संत भावेता भी गत पाए संत कनंद खंड संत का निंदक मात आए तताई संत कनंद न पाए संत कनंदक मात आर संत कनंदक परमेश्वर मार संत कनंदक राज ते हीन संत कनंदक दुख यार दीन संत कनंदक को सर्व रोग संत कनंदक को सदा विजोग संत कनंदा दुख में दुख नानक संत भावेता उसका भी है मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत का दुखी को डान लागे संत का दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मर संत के दुखना सुख ते टरे संत के दुखी को ना हिटाओ नानक संत भगत ले मिलाए संत का दुखी आदमी ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत का दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास न मृत की लोथा संत का दुखी जड़ किस नाय अपन बीज आपे खाए संत का दुखी गवन राखन हार नानक संत भाव तैले वार
संत का दुखी बिल्लाए जो जल विहीन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजय जो पाव के दिन त्रप है संत का दुखी चुटे किल जो बुआर तिलके तुम्हारे जो हिल संत का दुखी धर्म दे रात संत का दुख साधम थे कैद किरत निंदका तुरी पया नानक जो दिल पावे सोए थे संत कदो की बिगड़ रूप है जाए संत कदो की को दर गए मिले सजाए संत कदो की सदा सहकाई है संत कदो की मरण जवाई है संत कदो की पूजन आसा संत दुख चले रस संत के दुख न तिष्ठे को है जैसा पावे तैसा कोई होए पया क्यों मिटे को है नानक जाने सच्चा साए सब कर तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सत करो दिन रात तिसे ध्यावो सास की रात सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेला करने हार दूसर कौन के विचार जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ भागी नानक दन से सलोक तजो से आनम सुरजना सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौजा अशबद मानु की टेक पृथ्वी सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रहेगा बखन दिशन लागे आए मारे रखे को आप मानु के जनाए हाथ इसका हुक्म सुखो तिसका नाम रखंठ फराए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन लागे को सत मन में कर निंकार कर मन मेरे सद बिहार निर्मल स्नामृत पियो सास कर जियो नैनो के ठाकुर का रंग सास संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे बाबज पी अरबिंद कर हर कर्म सरण हर कथा हर दरगे नानक उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जगमाए सदा सदार के गुण गाए राम नाम कर विचार से तन मंत गणी संसार मन तन मुख बलैर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तित कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक ने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सूझै तिसकी जानो तृष्णा बूझै सत संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हर जन रहत अन दिन

जिसको हर पवन चित आवे सो संसला नहीं डुलावे जिस प्रभु प्रण कृपा करे सो सेव को किससे डरे। जैसा सत सदिष्टा अपने कार्य में आप समाया सोद सोद सोद सीजिया गुरु प्रसाद सब उजया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न कि जन्मे न कि मरे अपन जल त्या भी करे। आम जाम दृष्टि दृष्टि आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल मय आप अंतराय था भूताप नासी ना किस कारण धारण तारे हो ब्रह्मांड अलख भय गुरप्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुबावंत सकल संसार उतरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख सारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पा विश्राम नानक तिन प्रभु को तुम कर मान जो कुछ करे सुप्रभु के रंग सदा सदा से हर संग सह सवाय होय सो होय करण हर पछाणे सोय प्रभु का किया जन मीर लगन जैसा सत सदिष्टान जिस ते जद समाय समाय सुखन दान।

सर्व दुनिया पे परपाल सगल चिंता शमन माए तिस ते बिरथा कोई नाय। रे मन मेरे सदार जाप अवनासी प्रभु आपे आवे आपन किया कुछ ना होए जैसो प्राणी लोचै कोय तिसमें नाय त्र किसी काम कत नंग जापे करना रूपन तो नाई मोए प्रभु की जो सगल वर सोय धनवंता क्या को करब जा सब की तिसका दिया दरब असुर जे को कहाँ वह प्रभु की गुला बिना कहता जे को होए वह दातार ती दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदिर को थमे थमन तो गुरु का शब्द मन स्तमन जो पाखा नाव चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है।

अवनासी ब्राह्मण मेरा अखमान की तू प्रीतिया तिस्ते प्रेणी की को सर्व निरंतर एको सोय आपे बिनाया पैदा न गैर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दान दयाल बख्शान दे सातरे की चरणी पाओ नानक मन रे अंदाओ मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कृपा सोई हो हरण भरण जग नेत्र भोर तुझका मंत्र जाने हो रण ध्रुव मंगल सा जाके सर्व जोग नहीं कर दाके राज में राज जोग में जोगी तब में दृष्ट कुछ में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाए नानक तिस प्रकार नियंत्रण पाए जाके लीला कीमत नाय सगल देव हरे हो गाय पिता के जन्म के जाने भू सगल प्रोही अपने सोत सुमत के अंत अंजन दे जन दास नाम ते आवे सह ते कुण मै जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भी क्रय करंग नाना विद किनो विस्तार पूर्णा सी कंकार नाना चलत करे किन माए पूरे पूर्ण सबढाए नाना विद कर बंद बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब कर दिखे सब तिसके ठाओ जब जब जीए नानक हरनाम नाम कुतारे सगले जानते नाम कुतारे खंड ब्रह्मांड नाम कुतारे समृत वेद पुराण नाम कुतारे सुनन के अंते अन नाम कुतारे का अस्पताल नाम कुतारे सगले अकार नाम कुतारे पूरी स्वभाव ने नाम कुसंग कुतरे सुन सरुणे कर कृपा जी अपने अपने कर कृषि अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन कथ पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत के प्रदान कर तू सत सत जाकी वाणी सत पुरुष मैं समान सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मले जिसे बजाय तिसे वाले सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नाम गुरु ते पाए सत वचन सत उपदेश सत ते जन जाकर दे प्रवेश सत निरत पूजे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सुकरण हार अब न बूझ करत विचार करते किमित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वरती है विस्मण विस्म विस्मा जिन पूजा तिशा स्वाद प्रभु के रंग राज जन लय गुर के वचन पदार्थ लय वे दाते तू घटन हार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग अगल लाग गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे सलोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अश्वदे चरण सत सत बरसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत भेकनहार नाम सत सत अवनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुक्ता सुरत सत सत जा सुनता पूजन हार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभु सोए सत सुरबुद जन्माने करण क्रम तिन मूल पछाने जाकिर दे विश्वास प्रवे तत् ज्ञान दुश्मन प्रगटाया भय ते निर्भय सन जिसते विजय समाज समान वस्त मान ले वस्त कटाए ता गोबिंद न कह न जाए बूझे बूझन हार पवे हारान मिले नानक ठाकुर का सेवक का कह खारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रति ठाकुर के सेवक निर्मरी ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हार सेवक की राख निरंकार सो सेवक जिस दया प्रवतारी नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का परदा डाके अपने सेवक दर पर रख अपने दास को देव उड़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि कदमे कोई न लाख प्रभु के सेवक को गुण पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाए नानक सो सेवक दया जिस प्रगटाए नेके गेरी में कल राखे भस्म करे लखर को लाखे जिसका सास न कटते आवता को रख ते करा दा को रख दे करा मान चंद्र कर दो पा जिसके करता बिरथे जा मारे न राखे अब न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभु अलख उड़ानी बार बार बार भज पिए पिए मरते मंत्र तपिए नाम तंजन गुरमुख पाए तिरस्कृ न दृष्टाए नाम धन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम राजो जन त्रिताने मानता नाम में नाम समान उठत बैठत सोत नाम कहो नानक जन के सदका बोलो जह जे बा दिन रात प्रभु ने जन की नींदात करे भगत आत्म के चाहे प्रभु ने सो रह समाये जो हुआ वो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म छाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह गुण जानो वाट पर सहजूर है कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओर ले मंतन अपना तिन जान दे जिन जन अपनों प्रभु शाता सोयन सर्व तो का दाता
तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाव मिटावे रसियाण सगली चारती जन की तू सेवा लाख आमन जान हो तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैर सलोक सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसके संग से गुदर नानक हर गुण गावस्पति सतगुर सिक्की करे बरताल सेवको गुरसा दया सिक्की गुर दुरमत मले गुरु वचनी हर नाम सराय सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख करते हटे सतगुर सिखो नाम तंदे गुर का सुखुड भागी है सतगुर सिखल पल सवार नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जोरे गुर की आगे मन में सहेद आपस को कर कछु न जनावे हर हर नाम जे सत आवे मन बेच सतगुर के पात सेवके कार्ज राज सेवा कर तो है नेकामी तिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेव गुर की मत ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की का जाने सो सतगुरु जिस दे हर नावन कबार गुरु को बल जाओ सर्वधान जी सर्वविधान जी का दाता आठ पैर पार प्रमुख ढंगाता ब्रह्म जन जन में पारमेक अपने कुछ परम सहस अणबलैन जाई नानक ऐसा गुरु भागी पाई सफल दर्शन पे कुपुणीत परसत चरण कत निर्मल रीत भेटत संग्राम गुण जावे पार भूकी दर के गवे सुनकर बचन करण खाने मन संतोख आत्म बतया ने पूरा गुरु अखे जा का मंत्र अमृतिस पेख संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक तिस पावे तिले मिलाए जिह वाहे कुसत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेका हुन बोल न बोझ प्राणी अगम गोचर प्रण रिफाणी निराहार निर्वाह सुखदायता की कीमत कि पाए भगत बंदन करा चरण कमल हृदय सिमराय सतबल हारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद है सबरो जपने अरस पावे जन कोई अमृत भी अमृत सो सुरख नायक देना जाके मन प्रगटे गुणदास आठ पैर हर का नाम ले सतु दे सेव कु दे मुँह माय के संग नले मन में राखे हर हरे अंधकार दीपक प्रवास नानक भरमो दुख तै ते नासे तब तुमाय ठंड करताए अंत ब्याह दुख नाठे वाय जन्म मरण के मिटे देस साधु के पूर्ण उपदेस भौ चुका निर्भय बस सगल ब्याह मन ते खै नसे जिसका साधन कृपा तारी सत्संग जब नाम मुरारी तित पाए चुके भ्रम गावन सुन नानक हर हर जसरण निर्गुण आप सरगुण पियो इकला धार जिन सगली मोई अपने दर प्रवाह बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही को सर्व निरंतर एको सोए उत्पोत्र व्या रूप रंग भय प्रगा साध के संग रच रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली सार हर हर नाम कमामना नानक हे तन सार अष्टपदे संत जना मिल करो विचार एक सिमरना धार उर्पा स्वामी विसार चरण कुमार तार कारण कारण सुप्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वाते तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मन एक आसरा कुमन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंड उड़तावे सो तन हर सेवा ते पाए जिस कुणित बाछ मीत सो सुख साधु संग करीत जिस सुबा को करे फली करणी सासो बज हर की शरणी अणगु पावे रोग न जाए रोग मुड़े हर कदलाए सर्वधान में हर नाम दान जप नानक दर गई प्रवान मन प्रभु दो हर के नाहे दस दाव त्या बैठाए ताको बिघन लागे कोय जाकर देव से हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाव भोगन से पूर्ण सास भगत पाया तुम प्रगास तित कर जाए बसे वनासी कौ नानी काटी अम्बासे तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो का चो काचा वा गुण मिटे प्रभ से व्याप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हो उदार हर हर सिमर प्राण प्राण धारण पावन छूटन हर सिमर सास वे विचार हर की भगत गुरु मन लाए मन पंचत नानक पल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोते मीत कुमर बंता इंते कहो तुम कौन सनाथ राज रंग में विस्तार इंते कहो कौन छुटकार असस्ती रथ सुवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दे तुझ बुझ न बिगाना नाम सार नानक पछतान गुर की मातुले आने भगत बना बूडू बैसे आने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल हो तुमार वचे चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के कलयुग खजाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार पूज सार कुणाव सह सुभाज नान गुण गाव गुण गाव त्रि तुर समैल बिह जाय हुमे फैल हो अचंद विसह सुखनाल साध ग्रह सर नाम समाल चाड़ से आनम सगली मन प्रसाद संग पावे सच चरण
हर पूंजी संच करो बिहारियां सुख दरगह जयकार सरमर अंतर एको दे कहो नानक जाके मा सगले एको जाप एको साला एक सिमर एक कुमणिया एक कसके गुण गावण अंत मन तन जाप एक भगवान एको एक करया पूर्ण पूर फिर सार एक ते पै एक रात बरा छत गए मन तन अंतरिक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत ब्रह्माया परया तो शरणाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लायस्पति जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजन की मांगो धूर पार परमेश्वर दा बोल सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास सास प्रभु तुम्हें दयाओ चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत हे कोट एको हर नानक मंगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टमान सुगोय हर स्वभाव बिरला कोय जिन चाख्या से जंत्र बतान पूर्ण पुरख नहीं डोला न सुबर परे प्रेमिरा सरंग बचे चाव सत के संग परे शरण सवल आन सब त्याग अंतर पर गा संद ने बुला गुड़ भागी जी पया प्रभ सोय नानक नाम ते सुगोय सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत ले जन को प्रभ हो दयाल सेवक की नू सदा निहाल वंदन काल मगजन भया जन्म मरण दुख प्रम गए छपुनी सरदा सा पूरी राव रहा सत्संग हजूर जिसका साधन लिया मिला ए नानक भक्ति नाम समाए सुख विसरे घर न पाने सुख विसरे की आ जाने सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया सुख विसरे जीवन जिया सुख विसरे जगन मरा के गुर प्रसाद को बिरला लाखे सुख विसरे जीव ते काटे जन्म जन्म का टूटा काटे गुरु पुरे ताते बुझाया प्रभ अपना नांग दंत्याय साजन संत गुरु ए काम अंत त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो हर नाम जपाओ भगत पाए तरे संसार बिन भक्ति जन उसीचार सर्व कल्याण सुगन नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख आवत नास नानक नाम जपो गुणता सुप जी प्रीत प्रचाओ मन तन अंतर सुभाव नेत्र वैग दर्शक होए मन विकसे सा चरण तो भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जपलया ताकि उमा कही न जाए नानक रहा सब समाए प्रभु अक्षण दीन दयाल ने भक्त चल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व उठा करत परतपाल आद पुरु कारण करता रे भक्त जना के प्राण धार जो जो जपै सोए पुनीत भक्त पाए लाव मन हित हम निर्गुण यार नीत जार नानक तुमरी शरण प्रभु भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गाए अनुग्राज भोगड़े आई हर के नाम की कथा मन पाए भो भोजन का प्रसंगी रसना जपते हर हर नीत भली सो करनी सो बातन मंद हृदय से पूर्ण गुरु मनसा संग प्रभु दे निवास सर्व सुख नानक परवास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन की अनानिका आपे ही फिर जा पशुपति जब अकार क्षण दृष्टि तब पापन तब कहते हो तब जब थारी अपन सुन समाद तब बैर विरोह के संकुमाद जब इसका वर्ण चय न जावत तब हर शोक ओक से व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कांक सोत परम आपन के लिया वर्ती जा नानी करण हर न दूजा जब उत्प्रव केवल तणी तब बंद मुद को किसको गणी जब एक रंग में अपार तब नरक सरु कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव सकत कहो कि ठाए जब आप अपनी ज्योतर तब कम निर कौन कतर रे अपना जल तब करण हार करण नानक ठाक पार अविनाशी सुख अपने आसन तब जन्म मरण को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोय तब जमकी त्रास को सोय जब अवगत गोचर प्रभु एक तब चित्रगुत कुछ कुछ लेख जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब छुटे कुण बंधन बाद अपने आप आपी चर जा नानक अपन रूप आपी पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पतु होता तब मैल कहो कह धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन मां कह जय स्वरूप केवल जगदीश तय छर से लगत कहो केस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय कुछ भूकम त्रुवतावे करण करावन करणे हार नानी करते कर नय समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन भाई बा मित्र सुधभाए जय सर्व कलापे परवीन तब एक देव का कोचिन जब अपने आप अवतारे तो सगन अपसगन का विचार है जय अपन ऊंच अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कुन कही है चेहरा विस्मण विस्म रह विस्माद नानक अपनी गज जानो आप जय छेद फे समाय से व्याप्त माए
आपस को आप देश ते गुण का नाई प्रवेश जय कह के पुगुंता ते कौन चिंत लागे चिंता जय अपने आप आप थेर ते कौन कदे कुण सुने हर बहु बिंदु ते ऊचा नानका आपस को आपे पहुचा जय प्रच प्रपंच कार ते गुण मैं किन्न विस्तार पापुनता पई काल को नरको सुरु कुंसा आल जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै पार दुख सुख मन प्रमाण प्रकार के वख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तव नानके कह जय भगत भगत आप जय बसरे पासार संप्रथा दोह पाक आपे तनि उनकी शोभा अणु बणी आपे कौते करण चो जे आपे रस भोगन जोग जिस भाव तुसे अपन लावे जिस भाव तुझ खेल खुलावे बेशुमार थागन ते तोले जो बुलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को बसरिया दूजा कै दृष्टा रस पद आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जाति भाव तत्सू पाए अपने भाने लै समाए तुम ते भिन्न नहीं कुछ होय अपन सूत सब जगत पुराय जाको प्रभु जी आप जाय सतनाम सोई जन पाए सो सुंदर सी तत् कविता नानक सगल सिरष का जेता जी जंत्र सब ताके दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखै तिसो कोय न मारे सो मोय सुमन विसारे तिस अवर कां को जाय सब श्रेय निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साध गुणिदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर है दयाल सब ऊपर हो गए बाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रो ब्या प्रतमाल जी अनुभव पात जो जो रच सत से तया जिस पाव चले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हर नानक जाने जन ला कर के नाय तिसकी आसन विरथी आए सेवा को सेवा बने आए हुकुम बूझ परम पद पाए स्ते उपर नहीं विचार जाके मन बसे अलंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पूजे गुरु के भैर लोक सुखे पर लोक सुहे ले नानक हर पर व्यापे मेले सत्संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परम आनंद राम नाम तत् करो विचार दृढ़ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्रांतरण कह सुहाव आठ पर पुर वेखे नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदे सिर दे वसाओ मन छे नानक कुल पाओ हल पल दुल सुहा राम नाम त्रोड़ पूरे गुर की पूरी दिखया जिस मन सति साज ब्रिखया मन तन नाम च बोले बुलाए दुख दर्द मन ते हो जाए सच उपार करो पारी दरगह नि वेखे तुम्हारी काटे रखो मन माए नानक बहुर न आवे जाए तिस्ते दूर कां को जाए विलखण हारते निरपुज पै सगल भोमिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस प्रभु राखे तिस नाहि दुख नाम जपत मन हो सोख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानकता के कारज पूरा मत पूरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा से पुराण अंतर जामी पुरख वरदान जिस मन बसे सो निहालता के निक नयावत काल अमर पय अमरा पद पाय सासंग नानक हर ते सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपद सं संगंदर प्रभु डिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री खसखट माय अनक रंग नान नन दिखता है नौन अमृत प्रभु का नाम देहि मैं सिया का विश्राम सुन समाधन तय नाल कह न जा चर विसमाद तीन देखिया जे आप दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद कटकट व्या प्रया भगवान धरण माया कास पयाल सर लोक पूर्ण पुरतपाल बणतन पर्वत है पावन जैसी अग्गै तैसा करम पौन पौनी बैसंतर माए चार कुण दे समाए तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नाम सूपाओ वेद प्राण समृत मैं देख सिर सुरन खतर मै बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कभू डोले सर्व कला कर खेला खेल मोल न पाए गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जा की जो धार्यो स्वामी ज्योत बोध गुरप्रसाद भ्रम का नास नानक तिन मै विसार संजना का पेखण सा ब्रह्म समझना के हृदय सब धर्म समझना सुने सुवचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस किए रहत सत भजन सद सब कह जो जो होए सो सुखमाने करण करावन हर पव जाने अंतर बसे बाहर भी होए नानक दर्शन दे सम होए आप साध किया सब साथ तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एक अंकार अंकला लखिन जाए जिस जिस भाव तिस लय मिलाए कहो निर्गुण कही दूर आपे आप भरपूर अंतर गज से आप जनाए नानक तिजने आप हो जाए
सर्वभूतया वर्तार सर्वनारायण पेखनहार सकल समग्री जा कातण या पंज से आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया गया कारी की नी माया सबके मद अलिपतो रह जो कुछ कहने सुहा फे कहे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जा पावे तन लय समाए इसते हो सुना ही बुरा अवरे कहो कने कुछ करा भला कर दुआ नीकी आपे जाने अपने जी की आप सांझ धारी सम सांझ उत पोते अपन संग्राच ताकि गदमत कही न जाए दूसरो तसो जी पाए तिसका की ऐसा प्रवान गुरु प्रसाद नानक के जान जो जाने तिस सुख होया मिलाए ले प्रभु सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त श्री देव भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राय जने आवन कै सुहाव जन के संग चित आवे ना वा मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गावस्पति पूरे गुरु का सुन उपदेश पार करवे साथ साथ सिमरो गोविंद मन त्रिग त्रय चंद आसने त्याग गोत्रांग संजन की धुर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो सात संग करतर हर तन की परले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजनंद सात संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चितवन नारायण एक रूप जाके रंगन एक गोपाल तुम दर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल एक खेम कुशल सहजनंद सात संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चितवन नारायण एक रूप जाके रंगन एक गोपाल तुम दर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी गाय धार उत्तम सलोक साधके वचन अमलीक लाल रतन सुनत कुमार चोत उदार आप त्रै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संघ जाके मन लागा रंग जय जय सवतनाथ वाद जय सुन सुनन करे प्रभु गज पगड़े गोपाल महत के माथे नान कुदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरण आए कर कृपा बुरा मिलाए मिट गए गवन भय विश्राम मिट गए बैर भय सवेरे निम्ब अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होय सेव की सेव आल जंजाल विकार तेरा तेरा कहते राम कर गुर प्रस आल जंजाल विकार तेरा ते राम नाम सुनो सुना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक नि भी खेप हमारे प्रभु के सुध करो संधि सावधान एक कर जी सुखमणि सत गोविंद गुण नाम जिस मन वसे सो निधान सर्विछा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रभु सब लोए सब ते उज पाए स्थान बहुरन होए आन जान हरतन खट चले जन सोए नानक से प्राप्त होए खेम शांत हृदय नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान सह सुतम स्नान चार पदार्थ गुण प्रकाश सब के मत सकल ते उदास सुंदर चतुर्ता दिगा बेता समदर्शी एक देशेता फल ते जन के मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहन धन जपे मन कोय सब जुग में ता की गत होय गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सकल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कूठ बरा सा संगठ संत कृपा ते जमते छूटे जाके मस्त क्रम प्रभु पाए सा सर नानक ते आज जिस मन वसे सुन लाए परी तिह जन आवे अर प्रवचित जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलभ दे तत्काल उधार निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन मय समाणी दुख रोग गुण से पै परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते उच्चता की शोभा बणी नानक गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते उच्चता की शोभा बने नानक गुण नाम सुख मणि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुद्यागी।

अंदर पंच चोर है नित करे बुरियाइयां। दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुबाइयां। एन माया मोहनी मोहिया नित फिरे परमाइया। हाठा दोवै कीतियन शिव सकत वरताइया। शिव अगे शक्ति हारिया एवें हर पाइया। एक विचो आप तुद रखिया जो सत संग मिलाइया। जल विचो बिंब उठा लियो जल माहे समाइया। डखणे महला

दुख ना व्यापे। जिन जन गुरमुख बूझिया, जिन जन गुरमुख बूझिया, सौ चौकुंटी जापे। जो नर उसदी सरनी परे, तिस कबहु पापे, जन्म जन्म की मल उतरे, गुर तूड़ी नापे। जिन हर पाणा मन्या, तिस सोग ना संतापे। हर जियो तू सब नाका मित है, सब जाने आपे। जैसी शोभा जने की, जेवड़ हर परतापे। सब अंतर जन वरताया,

आवरी होर आवे जावे। सो मंगा दान गोसाइया जित पुख लह जावे। प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित टाडी तृपतावे। अरदास।

अदार थियो संतन की रेण, जित लभी सुखदा तार पौड़ी, बिन कर्मा हर जियो ना पाइए, बिन सतगुर मनुआ ना लागे, धर्म तीरा कल अंदरे, हाँ पापी मोल ना तागे, अह कर करे सो अह कर पाए, एक कड़ी मोहत ना लागे, चारे जुग में सो दिया, बिन संगत अहंकार ना पागे, हाँ मैं मूल न छूटे, बिन साधु सत संगे, तिचर था न पावही, जिचर साहेब स्यो मन पंगे, जिन जन गुरमुख सेविया, तिस कर दीबाण अपगे, हर कृपा ते सुख पाया, गुर सतगुर चरणी लगे, दखणे महला पंजवा, लोड़े दोहा।

अलख अलेखं खट दर्शन प्रमते किरे ना मिलिय पेखं वर्त करे चंद्रायणा से किते न लेखं वेद पढ़े संपूर्णा तत्सार न पेखं तिलक कडे स्नान कर अंतर का लेखं पेखी प्रभु न लबही विण सच्ची सीखं पूला मारग सो पवे जिस तुरमस्तक लेखं जिन जन्म सवारया आपना तिन जन्म सवारया आपना जिन गुर अखी देखं रखणे महला पंजवा सो निवा हो गड़ जो चालाउ ना थिए कार कुड़ावी छड़ सम्मल सच तनी महला पंजवा हब मसानी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थिया सो नानक मस्त।

जाए पवाइए, बह जो नी नचा बचन करे तै खिसक जाए। बोले सब कच्चा अंदरों थोथा, कूड़े यार कूड़ी सब खच्चा। वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चे पातशाह वेख तुर कर मचा। जमदूती है हेरिया दुख ही मह पचा, होवा तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखणे महला पंजवा, परबाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए। जन्म मरण मन मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा, देहे अंधारी अंध सुवी नाम विहुणिया, नानक सफल जन्म जैकट वोठा

पौड़ी, जिन जिन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई। ओह आप तरिया कुटुंब स्यो सब जगत दराई, ओन हर नामा तन संचिया सब तिखा बुझाई। ओ लालच छड़े दुनी के अंतर लिवलाई, ओ सदा सदा कर आनंद है, उस सदा सदा कर आनंद है। हर सखा सहाई उन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपाई। हुआ ओही अल जग में गुर ज्ञान जपाई, पूरब लिखिया पाया हर स्यों।

सोपिरी पौड़ी तरत आकाश पाताल है चंद सूर बिनासी बादशाह उमराव खान टाहे टेरे जासी रंग तुरंग गरीब मस्त सब लोग सिदासी काजी शेख मसाय का सब उठ जासी पीर पैगाम्बर ओलिए को थिर न रहासी रोजा बाग निवाज कतेब विण बूझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी मे चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अविनासी दखने महला पंजवा डिठी।

तट तीरथ देव दिवालया केदार मथुरा काशी कोट ते तिसा देवते सन इंद्र जासी सिमरत सासत वेद चार खट दर्स समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासी सब काले वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दिसे सो विणसना सब बिनस बिनासी थिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी। सलोक डखणे महला पंजवां सै नंगे नह नंग भुखे लख न भुखिया दुखे कोड़ कोड़ कोड़ ना दुख नानक पिरी विखंदो शुभ दृष्ट। महला पंजवा सुख समूहा पोग ओम सबाई कोतनी नानक हबो रोग मस्तक नाम विहोणिया नानक हबो रोग मृतक नाम विहोणिया। महला पंजवा हे कसकू तू आहे पछाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मानुख परथाई लजीव दो पौड़ी नेह चल एक नारायणो हर अगम अगादा नेह चल नाम निदान है जित सिमरत हर लादा नेह चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच तरम तप नेह चलो दिन रैन अरादा दयाल तरम तप नह चलो जिस कर्म लिखाता नह चल मस्तक लेख लिखिया सो टले न टलादा नह चल संगत साध जन बचन नह चल गुर सादा जिनको पूरब लिखिया तिन सदा सदा आरादा। सलोक डखणे महला पंजवा जो डुबन दे आप सो तराए किन खे तारे दड़ो पी तार नानक पिर सिउ रतिया।